गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

नानक दास सदा कुर्बान। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासे हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याया जिस पिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलना जी। पंजा प्यारे चौहा साहिब साधे चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वन छकिया। देख चलाई तेग वाहि देख के अंडिट कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलना जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चिराए। तिन्हां पुरातन ते वर्तमान शहीदां दी कमाई दा ध्यान करके बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलना जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तां तां रचिया रहा है। देख देख फते बिरत की पैच पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी देशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलना जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत्ते राखे हे अकाल पुरख वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां ते जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट सच्चे पिता जीओ। आप जी दे अग्गे अरदास बेनती जोधड़ी कोटान कोट शुकर आप जी दा महाराज। इन्नियां मेहरां वरताईयां अमृत वेले तों लै के संध्या वेले दे दीवान विच आप वरते। आप जी ने नाम सिमरन दे अभ्यास करे उपरंत कथा विचारां कीर्तन दियां दातां बख्शियां मेरे सत्ते पातशाह जीओ। उपरंत आप ही अमृत बलाखियां नूं अमृत दियां दातां वंडियां मेरे सच्चे पातशाह जीओ। आप जी दे हर पल विचरदियां अनेक प्रकार दियां भुल्लां गलतियां हो गईयां होंदियां मेरे सच्चे पातशाह जी बख्श लेना। तुसी आप साडे हिरदे विच निवास करो मर्स आप हिरदे विच निवास करो। मेरा वर्ताओ मेरे सच्चे पातशाह जीओ सब संगत दी चरण टूर बख्शो। असी खते बहुत होते अंत ना पारावार हर कृपा करके बख्श लो हम पापी वड। मेरे सच्चे पातशाह जीओ अपने बाणी दे लड़ लाओ अपने बाणी दे लड़ लाओ। आपे ही अमृत दिया दाता हिरदे विच वसाओ मेरे सच्चे पातशाह जीओ। आप जी दे अगे आप जी दे बच्चियां ने अनेक सेवावां निभाईयां होणगियां तुसी आप ही सेवावां लैण वाले हो। आपे ही उद्दम बख्शना हर पल हर मैदान फतेह बख्शना मेरे सच्चे पातशाह जीओ। आप जी ने कीर्तन दियां लहरां वरतियां उपरंत छे पौणियां आनंद साहिब जी दे जाप बख्शे। मेहरा दे माल आपे ही वरतना ऐदां ही संगत दियां घड़ियां हिरदे विच वसा के रखना। हुण मेरे सच्चे पातशाह जीओ अपने हुक्मनामे बख्शो ते संगत नूं निहाल करो मेरे सच्चे पातशाह जीओ। आपे ही संगतां वल्लों आप जी दे अगे देग दी सेवा खातर हुई है मेरे सच्चे पातशाह जीओ। भोग लाओ
ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਿਹਰ ਵਰਤਾਓ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ।

मिल बोच है खोज शब्द मैले राज करेगा खालसा की रहे ना कोए ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए वाहि गुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार जो सरदार।

सोलह रागोड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जयकर कीरत आखिया कर ते का होए विचारो। तत्कर सोहेला सिवरो सिरजन हारो। तुम गाव मेर निरपो का सोहेला, हम वारी जित स।

अरदास सिख ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुर नानक नहीं त्याय, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब उपजाए। तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निद आवे ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलना जी। हे निमाणिया दे मान, नितानिया दे तान, न्योटिया दी ओर सच्चे पातशाह जीओ। कुटान कोट शुकर मेरे सच्चे पातशाह जीओ, आप जी ने आप ही उद्दम बख्शिया। संगत नू ए रंग बख्शे आपे ही समागम दियां अज दियां घड़ियां दे अंतले समय विच, अपने स्वरूपां दे सुखासन दी सेवा लिती मेरे सच्चे पातशाह जीओ। संगतां कोल आप जी दियां सेवां करदियां, आप जी दे जस गांदियां, अनेक प्रकार दियां भुल्लां गलतियां हो गईयां होणगियां बख्श लैणा। अगों तो आपे ही समत बख्शनी, रहत बख्शनी, सोझी बख्शनी ते अपनियां सेवा करन दे काबिल बनाना मेरे सच्चे पातशाह जीओ। असीं भुल्लणहार हाँ पर तुसीं बख्शणहार हो, बख्श लैणा। हुण आप ही आपे ही आग्या बख्शो अपने सुख आसन इस स्थान ते जाण दी, आप ही संगतां नूं आग्या बख्शो मेरे सच्चे पातशाह जीओ। कीर्तन सोहला साहिब की अरदास। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ़ करनी, सरबत दे कारज रास करने, सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवै। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

तट तीरथ सब धरती भ्रमयो, दुबदा छुटके नहीं। मन कामना तीरथ जाय वसयो, सिर करवत तराए।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लख बार चुपै चुप न होवै जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना बुरियां भार सह सियाणप लख होहि तैक न चलै नाल किव सचियारा होई किव कूड़ै टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म लै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक न हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई

मने की गत कही न जाए, जे को कह पिछे पछताए। कागद कलम न लिखन हार, मने का वह करन विचार।

केते भर में घाट घड़िए रूप रंग के वेश, केते अकर्म भूमि मेर केते, केते धूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश।

कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। हर नाल रतु मन मेरे दुख सब विसारना, सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे, सदा सिर तसला तेरी ना मन वसावे।

कहे नर तू सदा गम है तेरा अंत न पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। लभ लोभ अहंकार चुका सतगुर पल्ला पाया, कहे नानक जिसनु भगता की चाल निराली, चाल निराली भगता केरी बिख मार्ग चलना। कन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना, कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। जिव तू चलाए ते वै चल जिन्ना मार्ग पावे, जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे। सोहला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सोहला सतगुरु सुनाया। एक फेरे कनेरे करें गल्ला गली किने न पाया,

पवित्र माता पिता कुटुंब सह सो पिछ संग सवाइया कहे नानक से पवित्र जिन गुरमुख हर हर त्याया न जाए ससा कित संयम रहे कर्म कमाए मन तो वो शब्द लागो हर सो रहो चित लाए जियो मैले भारो निर्मल जियो तमैल तिन

साचा सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी। सच अलख वडाणी ताकि गत कही ना जाए। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। गुरुद्वारे लाए पावनी इकना दसवां द्वार दिखाया। कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। गावत असोला कर सच जिथे सदा सच त्याव। ए सच सपना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे।

सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

करने सर्व विचार सच्चे तेरे खंड सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चा तुद्ध आखे लाख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोड़।